शेखराव जिनको हर प्रभु लय मिलाए तिनकी गत गहन गत कही न जाए एक घड़ी मैं थाप थाप कह कह कहना आख संता आख सुनाई जे सौ काले थाए न पाई जिनके पूते पुन तिन गुरु मिलाए सच वाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द बसाए तहां दुख जाए ज्ञान रतन सच लिसै सुपा समाई नावै जीवड़ होर तन नाही कोय जिसनों बख्शे सचा सोए पूरे गुर का पूरे शब्द मन वसाई नानक नाम रते सुख पाई आसा महला तीजा नृत करे बहु बाजे वजाए ਇਹ ਮਾਨ ਅੰਧਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਭਰਮ ਨਾ ਲਵਾਓ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸੋਝੀ ਪਾਏ

गुरमुख भगत घाट चानण होई आप मशान मिले प्रभ सोई रहाऊ। गुरमुख करनी गुरमुख निरत हर लागे पाऊ, पूरे गोताल बिचों आप गवाई। मेरा प्रभ साचा आपी जान, गुर का शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यारू, गुर का शब्द सहज विचारू। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवित मरे, गुर प्रसादी भव जल धरै। गुर कै शब्द गुर कै बचन भगत थाई पाई, हर जियो आप बसै मन आए। हार कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेह चल भगत हर स्यों चित लाए। भगत रते तिन सची सोए, नानक नाम रते सुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

गुण आख बखाना। जो सेवा है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तन बल जासी।

तूने चल करता सोई। तुद आपे पावे सोई वरत है जी, तू आपे करहे सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जनोई। आस्था महला चौथा।

मान एक न चेत समूढ़ मन हर बिसरत तेरे गुण गलया राऊ ना हो जति सदी नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तन की शरणा जन तू नाही विसरया आस्था महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया।

वाजवेन्ति चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए जत की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दोष सब तुम काबहु, आप हाथ दे मोहि बचावहु।

सब वर्ण कौ आज संगरे पूर्ण होए हमारी आशा दौर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ द मुझे उभरे आए मरण काल का त्रास निभरे आए। हू जो सदा हमारे पछा सरिया कर हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब किया वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहीं हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा। नमस्कार।

जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा तंदरालम जानत भेद भेद हरियालम।

दुखद हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं।

जैन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम शरण तिहारी आप हाथ दले हो बारी सर्ब ठौर मोह सहाई दोष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ सरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तोहे बखाने ओ। दोहरा

ओंकार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज से ती मन भजियां बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइया शब्दों तां गावो हरि के राम मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो कह मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे घर तां तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां ए बड़े आईया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो।

आधारो। वाजे पंच शब्द कर सुभागय, कर सुभागय शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कह लागे। कह नानक तैं सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनद सुनो बड़ पागी हो, सगल मनोरथ पूरे।

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो।

0: है मिली तेनू
1: थोड़े दिन हो
0: नौकरी है मिली तेनू अज तेरा सारिया कोर सुबह सोया है अज तेरा सारिया तो रुतवा सो

पासे अबदूत बेहंगम साधुआं ताड़ियां लाईयां, दूजे पासे नंगियां ते गंद सुन वजद विच आईयां, तेरी चौड़ी शक्ति दे।

बिकट गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विभूता, गर्भ जोन में किरत पया, पूर्व कमाणी छोड़ह नाही, जमदूत ग्रास्यो महा पया, बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिष्ण न बूझे बहुत हया, असाध रोग उपजिया संत दुखन, देह बनासी महा खया, जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्म मया, राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई रहाउ, दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी धूर काटे जम जाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतत उदाहरण कृपा।

बिन से अभमान एक त्याई है साध कह संग पाप बनासे नाम कह रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहे आ गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाई आवागौन मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मह हुए निवास संत संगत मह हुए उदार नानक पवजल उतरस पार राम कली महला पंजवां गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप

करन सदा सुख होए, नींद सहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिनसे सब दुख, सहज आनंद करहो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हुआ आप, राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल कर तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नर नरह नमस्कार, जलन थलन भसुद गगन एक एकंकार, रहाओ हरन तरन पुन पुनः करन, नह गिरह निरंहारं, गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारं, करन केल गुण अमोल नानक बलिहारं, राम कली महला पंजवा, रूप रंग सगंध भोग, त्याग चले माया छले कनक कामनी, रहाओ भंडार दर्भ अर्भ खर्भ, पेख लीला मन साधार, नह संग गामनी, सुत कलत्तर प्रात मीत, उर्ज परयो परम मोहयो, एह बिरख शामनी, चरण कमल सरन नानक, सुख संत पावनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग राम कली महला नौवां, ते पदे रे मन ओट ले हो हर नामा, जा कै सिमरन दुरमत नासै, पावह पद निर्बाना, रहाओ बड़ भागी ते जन कौ जानो, जो हर के गुण गावै, जन्म जन्म के पाप खोए कै, हुन बैकुंठ सदावै, अजामल को अंत काल में, नारायण सुध आई, जा गत को जोगी सर्वांशत, सो गत छिन मह पाई, नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या, धर्म कौन गज कीना, नानक बिरध राम का देखो, अपै दान तेह दीना, राम कली महला नौवां, साधो कौन जुगत अब कीजै, जाते दुर्मत सगल बनासै, राम भगत मन पीजै, रहाओ मन माया मह उर्ज रहियो है, बूझै नह कछ ज्ञाना, कौन नाम जग जां कै सिमरै, पावै पद निर्वाना, भई दयाल कृपाल संत जन,

नाम नर निस्बासुर मह निमुख एक उर धारै जम को त्रास मिटै नानक तेह अपनो जन्म सवारै राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध लेह छिन छिन औध घटै निस्बासुर बिरथा जात है दे रहाउ तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझै कौन कुमत उरझाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै निमुख ना ता को गायो माया को मद कहां करत है संग ना काहू जाई नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारी सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारी जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा जे को सत करे सोच पीतै तप कर तप न होई जे को नाव ले बदनाम कल के लखन ए जित सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है।

ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी तीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावो तो वो तिलक चढ़ावो सोचविण सोच ना होई कल परवान कतेब करान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडे आई एदू उपर कर्म नहीं जे घर होंद मंगन जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबुद है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागै।

आप गुर कै शब्द रचै मन पाए, सिख्या सहज विचारी खाए, पसम चढ़ाए करह पाखंड, माया मोहे सह जम दंड, फूटै खापर भीख न पाए, बंधन बांधिया आवे जाए, बिंद न रख है जति कहावे, माई मांगत त्रै लभावे, निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला, पेख करह खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेले बहु नटुआ, अंतर अगन चिंता बहु जारी, विण कर्मा कैसे उतरस पारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक सोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाऊ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मूलक हीरा, तितराता मेरा मन तीरा, हउमै ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भउ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहु समाए, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परूता, जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी, सुन समाद सहज मन राता, तज हों लोबा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला।

मूल पांडे सच कहिए, हम मैं जाए शब्द कर लहिए रहाउ। गण गण ज्योतक कांडी चीनी, पड़े सुनावे तत ना चीनी। सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदो ना सगली चार। नावे है धोवे है पूजे है सैला, बिन हर राते मैलो मैला। गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरतारथ। वाचे वाद ना बेद विचारे, आप डुबे क्यों पितरा तारे। कट कट ब्रह्म चीने जन कोए, सतगुर मिले तां सोजी होए। गणत गणिये सहसा दुख जीए, गुर की सरन पवे सुख थीए। कार्य अपराध सरन हम आया, गुर हर पेटे पुरब कमाया। गुर सरन ना आइए ब्रह्म ना पाइए, परम पलाइए जन्म मर आइए। जमदार बहंत हो मरे बेकार, ना हृदय नाम ना शब्द आचार। एक पांडे पंडित मिस्र कहावे है, दुबदा राते महल ना पावे है। जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मध्य को जन आपार। एक बुरा भला सच एक, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक। गुर

वाद पड़े रागी जग तीजै, त्रै गुण विखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लिहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै।

ये देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं कीजै। मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै। मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै। ऊंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रवीजै। नानक नाम मिलै कृपा प्रभ कीजै। राम कली महला पहला, अंतर उतपुज अवर ना कोई। जो कही है सो प्रभ ते होई, जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई। उत्पत पर लो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर। जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाऊ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल। जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल। एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान। नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान। हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीरथ परमस ब्याध ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई। जमपुर बहादुर है सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई। सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा। शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा। कर्म मिले पावे सच नाम, तुम शरण लागत रहो स्वभाव। तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जप गुरमुख हर नाव। हौ मैं गर्भ जाए मन पीनै, झूठ ना पावस पाखंड कीनै। बिन गुर शब्द नहीं घर बार, नानक गुरमुख तत विचार। राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावह बौरे। ज्यों जन्मे त्यों मरन भया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै। नाम विसार भवजल पया, तन तन देखत गर्भ गया। कनक कामनी स्यों हेत वधाई, की नाम वसार है परम गया रहाऊ। जत सत संयम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया। पुन दान इशनान ना संयम, साध संगत बिन बाध जया। लालच लागै नाम बसारियो, आवत जावत जन्म गया। जां जम धाए केस गह मारै, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनत निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्ब दया। बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया। खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यों, मोह पाप मह गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया। करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया। सुख संपत को आवत देखै, ताकत मन अभमान भया। जिसका एहो तन धन सो फिर लेवै, अंतर सहसा दुख पया।

अंत काल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे मया, आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवह किसे सुनावह, पै सागर असराल पया, देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया।

रह गगनपुर दृष्ट समैसर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन की ए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगास्या त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

कोई नाम न जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सत चेतनंद परिपूर्ण परमात्म देव अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी की अपार मेहर रहमन दा सदका नित नेम अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब

क्या तद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तद श्री राजा तू जग मैं आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया। कहे नानके शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर सो चित लाया। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी, हर बिन वरना देखो कोई, हर बिन वरना देखो कोई नदरी हर निहालया। यह विश्व संसार तुम देख दे, यह हर का रूप है हर रूप रूप, हर रूप है हर रूप नदरी आया। कह नानका

जन मानस ते देवते की करत न लागी बार। सतनाम श्री वाहिगुरु जी राग सोरठ की वार। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन बिणदन ता जग खाया। मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिनि साजना आमचित लाया। माया ममता मोहनी जिन बिणदन ता जग खाया। मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिनि साजना आमचित लाया। बिन नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। धंधा करत्या नहीं फुल जन मंगवाया। सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिन्हां कौ मिलिया जिन कौ तुर लिख पाया। महला तीजा। घर ही मह अमृत भरपूर है मनमुखा साधना पाया। ज्यों कसतूरी मृग न जाने ब्रह्म दा भरम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खुआया। गुरमुख विरले सो जी पाई तिन अंदर ब्रह्म।

0: होते हो। तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

रख मोगत शरणागती। मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत।

स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्व

हार जल जल रोवे बपुरी चढ़ चढ़ पंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पड़ी मन सगो के।

हम जाति किसी को हम मूर्ख सियाणा मुख मुखी सार न जाना हम माया हम छाया हम एक कठिन दुपाया हम एक बुझे तांदा सुझे चान हुआ कथ कथ सुझे नान जिहा भी है।

बाण लख सुरतन संग्राम में छुटे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।

धर्म सच्चा निशान पुरुष सच्चा साहब एक तुम जिन सच्चो अटवर का जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस जिस ज

0: न पाई रे पे पानी मणि मसानी अंध न जाने त्रिपतानी सतगुर भेटे सो सुपायर का नाम वसाए नानक नजर करे सो पाए आसंग से तेने केवल
1: हमे शब्द जलाए पड़ी प्रगत्रे मन पाउंदे दर्शो।

जिनकी लिखे पत पवे चंग ते के पवित्र कंजना को तुत पाया कहां तिन्नी कठिन आया इन जनता के वस्ते

गुरु बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधन मारिए जे अकल गलना देवे हो नौ पटारी ऐसी कल

पढ़ पुस्तक संध्यावासन तेलुगु जन भगवत समाधि मुख चूल लिखो संसार त्रै पाल तिहार विचार धनमाला दिन लाटंग धोती पत्र कपाटंग जान परमं करमं तपो करने जो करमं कहो नानक ने जो खावे सतगुरु बात न पावे पावड़ी कपड़ रूप सुहावना सतगुरु।

दीवाने को कलमे का हम तुमा मेल डर लै लेखा पीड़ छुटे नानका जो तिल कोई अपनी कमा दियो।

ब्रह्म ज्ञानी का दरबड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए, ब्रह्म ज्ञानी का कदया न जाए।

0: हरे
1: कई गोड़ किए रदन सुमंद कई गोड़ नाना प्रकार जंत कई गोड़ जात के नर प्रसाद कई गोड़ भूत प्रे सुगर मृगाच कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट बैठा थी खाए कई कोट का ले थक पाए

हस्तपति धन के दुख नर्जा कटे धन के दुख जमते नहीं छुटे धन के दुखन मत होए बनी इंसान के दुखन सोवा देहीन कृपा कृपा जे करे नानक संसंग अंदर भी करे

0: केवोदी रंगीली तरसी देवसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

गुरुदा खजाना की गुरुदा शब्द वाहिगुरु परमात्मा दा आत्मक जीवन देन वाला नाम नका नक भरिया पिया है, संपूर्ण नका नक भरिया पिया है। ते शुभ गुणा दे रतन भी इस शब्द रूपी खजाने दे अंदर ने। ये वखरी गल है कि असी सतगुरु कह खजाने नू वेख्या के नहीं वेख्या, पर जिन्ना ने दिठा उन्होंने कह दिता कि इस खजाने तो बाहर कुछ होर है ही नहीं, इस खजाने तो बाहर कुछ होर है ही नहीं। पढ़ो बचन महाराज की पावन बारी दे, हम तनवंत भागड़ सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, सिखा केवल रुमाले सतगुरां दे उत्ते चढ़ाण तक ही सीमित ना रहो। ये भी एक साड़ी श्रद्धा का प्रगटावा जरूर है, पर साथ संगत करना की है? गुरु के खजाने नू आपने भोखना है। सतगुरु जी आखदे ने जदों रब दे गुण गाए, प्यू दादे दा खजाना खोल के वेख्या, असी अमीर हो गए। ते असी अमीर प्यो दे पुत्र हाले भी गरीब हां, क्यों? सानू गुरु दे खजाने उते भरोसा नहीं। असी अज भी दर दर दे मंगते बने हुए हैं। किस वास्ते? क्योंकि घर अंदर असी आए गल खोज के वेखी नहीं। क्यों समझ लो, घर होंदा मंगन जाए उलामा मिले तही। घर विच वस्तु होवे ते असी मंगन जाइए ते अगो अगला कह देंदा तेरे तो अपने घर विच हैगी, साडे कोलों क्यों मंगना है? सात संगत, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदान। रतन लाल जां का कछु न मोल, भरे भंडार अखूट अथोल, खामे खर्चे रल मिल पाई, तोट न आवे वध दो जाए। कौ नानक जिस मस्तक देख लिखाए, सो एत खजाने लया रलाए। महाराज कृपा करदे ने, रतन कोठड़ी अमृत संपूरन, सतगुर कह खजाने। सतगुरु दे खजाने विच, सतगुरु दे शब्द विच आत्मक जीवन देन वाला नाम नका नक भरिया पिया है। ते शुभ गुणा रूपी रतन जड़े ने ना, वह भी इस शब्द दे अंदर नका नक भरे पे ने। पढ़ो महाराज की पावन बाणी, रत्ना रतन पदार्थ, फिर ध्यान देवियो, बहु सागर भरिया राम, पर बाणी गुरबाणी लागे तीन हाथ चढ़िया राम। हुण जिहड़ा बंदा टुब्बी मारनी जानदा है, समुंदर दी तह विचों रतन ओ वेख के आवेगा गोतेखोर, ते जेड़ा केवल किनारे ते जाके खड़ा हो गया, ओनू सिपियां कोखे नजर आणगे, ते शायद ओ कह भी देवे भी लोकी कहंदे ने भी समुंदरा विच रतन है, पर ये अत कथनी जिन्हें वेखे ही नहीं, जिंदी निगाह ही केवल सिपियां तक गई है, कोखियां तक गई है, टुब्बी मारनी जानदा नहीं, ओनू ओ रतन नजर नहीं आणगे। बिल्कुल इसे तरह सात संगत, ओपरी निगाह नाल सतगुरु दे शब्द नाल जुड़ांगे, बारी नाल जुड़ांगे, सानू ओ रतन नजर नहीं आणगे, ओ शुभ गुण नजर नहीं आणगे, पर जदों टुब्बी मारांगे रस लैके पढ़ांगे ते फिर आपा भी कहांगे, लाल रतन जाका कशु न मोल, भरे भंडार अखूटिया तोल, खामे
ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਕਾਨਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਖਜ਼ਾਨੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ

0: हरि बहादुर सिंह सूर में हाथ बारे अपन दनाली बारी उत्ते भारू हो गई भजदी फौज अकाली
1: तुरपे वैरी छाते मोर

परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु स्वरूप गुरां दी साजी अते नवाजी होई गुरु खालसा संगत जी एक बारी सतगुरां दी बख्शी होई फतेह करिए प्रवान। कोई भी रचना वांझी ना रहे, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संतां दे जोग ने गुरु दीआं संगतां जड़ियां सतगुरु महाराज के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर के अपने जीवन सफला कर रही ने। और सतगुरु महाराज के पवित्र इतिहास के नाल चल रही लड़ी के नाल जुड़न का यतन करिए। जिस समय मीरी पीरी के मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज करतारपुर साहब की पावन पवित्र धरती उत्ते विराजमान ने, इधरों पेंडे खां जिहड़ा गुरु घर दे विच पलके वड्डा होया, जिहदे सारे कार्ज गुरु महाराज ने गुरु हरगोबिंद महाराज ने अपने हथीं कीते, अज अहंकार दे विच आके गुरु घर का दोखी बन के बह गया, गुरु घर का वैरी बन के बैठ गया। जब पेंडे खां काले खां अनवर खां उस्मान खां एक पंच वड्डे जरनैल लाहौर दरबार तो चढ़ के शाही फौजा पेंडे खां दे तरीके कबीले दे पठान इकत्र होके करतारपुर साहब की पावन पवित्र धरती उत्ते हल्ला बोलने की तैयारी करने वास्ते चलते चलते इन्होंने पिंडे खां दे पिंड वड्डे मीर उतारा किया। 50,000 फौज लाहौर दरबार की, 25,000 फौज जलंधर के सूबेदार कुतब खां की है, 75,000 फौज होके इकत्र करतारपुर साहब की पावन पवित्र धरती उत्ते हमला करने की तैयारी करके आए। उन्होंने गुरु घर का भेत लैण वास्ते अनवर खां नूं घल्लिया। जब अनवर खां गुरु घर के विचों मार करके वापस मुड़िया, उसने जाके गुरु नानक के घर का सारा भेत जाके दसना किया कि गुरु महाराज को गिणती दे सिख ने, क्योंकि जदों करतारपुर की जंग हुई उदों विसाख का महीना सी। गुरु की संगत सारिया आपो अपने कार्यों खातर बढ़ाई का कम चल रहा जी, कणक की वाढ़ी का आपो अपने घर गई हुई सन। अनवरखा ने जदों जाके सारा भेद दे दिता कि उन्होंने कोल ममूली असला थोड़ी गिणती में सिंह ने सिख ने, तो इतने कई विद्वाना ने लिखिया ते उस समय पेंडे खां नूं बाबा गुरदत्ता जी दे पुत्तर धीर मल अते गुरु हरगोबिंद महाराज दे पोते धीर मल ने एक खत लिखिया कि तुसीं गुरु घर दे उत्ते जिन्नी छेती हो सको हमला कर देवो, पर इत्थे कुछ विद्वानां ने इसकी खोज करके इस दलील नूं गलत साबित किया, क्योंकि जिस समय करतारपुर की जंग हुई उस समय धीर मल की बड़ी थोड़ी उम्र है, वो नहीं लिख सकता। और जदों अनवर खां ने जाके सारा भेद गुरु नानक के घर का दे दिता, तो काले खां ते पिंडे खां ने अपनी फौजां नूं करके तैयार ला के नगारे उत्ते चोटा बड़े वीर तो तुरन दियां तैयारियां कीतियां। इधरों गुरु नानक दे घर दा सिख सेवादार भाई मलक जाती जिन्हों पता लग्या कि फौजां ने
ਵੱਡੇ ਨੀਲ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਤੇ ਕੁਤਬ ਕਾਂ ਪਿੰਡੇ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ।

0: वाहिगुरुजी का खालसा
1: वाहिगुरु। प्यारे आओ, सब तो पहला गुरपति की सांझ करिए, गजपत की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु जी निर्गुण हैं, पापी बड़े हां तो तेरा ही बच्चा है, बहुत बड़ा मैं पापी हूं सतगुरु जी, पर जिवें दा हां हां तो तेरा ही बच्चा है सतगुरु जी, तेरी चरणी आप तेरे द्वारे पे आ सका हां, कृपा करो अपने बच्चे की अरदास अपने दर से प्रवान करो।

सतगुरु जी, हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चलेंगे चलेंगे। सतगुरु जी असि तान्ने हुए थे, सानू पता ही नहीं तेरे राह ते किवें चलना, सानू इन्नी सूझ नहीं। जिस तरह साडा मन कहिंदा है जिहड़े पासे लैके जांदा है असीं तुर पैंदे, सानू तां पता ही नहीं कि तेरे दस्से राह ते तुरना किवें। तुसी आप ही कृपा करो सतगुरु जी, सतगुर दया करे सुख दाता, हे सुखां दे दाते सतगुरु जी तुसी आप ही दया करो। हम लावे अपना पानी ते सानू अपने पल्ले नाल जोड़, सानू अपने पल्ले नाल जोड़ कृपा करो। किस तरह तुहाडे मार्ग ते चलना है ये सोझी तुसी आप बख्शो। असी तां आ कठे आ तुहाडे द्वारे, असी तां आ डिगे आ तुहाडे द्वारे ते तुसी आप ही

हर दयाल शरणाया। जो शरण में आए हैं सतगुरु जी, तुसी दयालु, तुसी कृपालु, मैं पापी, मैं निर्गुण, तेरी शरण आई ते मंग केड़ी आओ सारे दस की मंगी। परिया तो शरण आए

गा के तेरे दर से आ सकता सतरू सारे तरह से फिर फिर के अज तू कृपा की तेरी शरण आया तेरे चरणा चाह के आ डिगा हाँ तुझे कृपा करो सतरू।

बाल बाल बाल गोर दे बाल बाल बाल गोर दे बाल बाल बाल गोर दे। जिन नाम दृढ़ाया

कुर्बान जाइए ऐसे सतगुरु जी तो जिन्हां ने मेरे वर्गे पापी बख्श लिया, इन्ने औगण इन्ने पाप कि सतगुरां ने मेरे वर्गे पापी की झोली नाम रूपी अमोलक निर्मोलक हीरा पा नाम की दृढ़ता बख्शी, नाम के रंगन मिलणगे। ऐसा कोई डर है? कोई डर ऐसा नहीं, कोई डर ऐसा नहीं। बलिहारे जाइए ऐसे सतगुरु जी तो सदा सदा सदा सदा कुर्बान।

नाम दृढ़ाया, नाम दृढ़ाया, नाम दृढ़ाया, नाम दृढ़ाया, नाम दृढ़ाया, नाम दृढ़ाया।